0: मूर्ख पंडित हिकमत हूं जो संजय करे प्यार, तरमी तरम करे गवावे मंगया मोर द्वार।
1: पूछे को कहवा दगावे जो दका विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हो।

करता करे सो होए अगै जान न जोत है अगै जियो नवे जिनके लेख पथ पवे चंगे से ही।

नाल रहो तुमन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सब नगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरा सब किस है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनवाई वसया जने सा सब पुजाइया। सदा कुरबान किता गुरु विटो इस्तियां वडियाइया, कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच सौ तित कर सपागे, कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दो तद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुझन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया तेरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पय सर से पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पुत सतगुर हया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूर, सुनते पुनीत।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जिया दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी विखे

सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आई फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास ही सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस जिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी पंजाब प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई तेग वाही देख के डट कीता तेना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते जड़े तनारियां नाल चराई गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां

उनका सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तरसे अरे आयत देख देख फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाल बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसह दान प्रसाद दान दान अंसर दान नाम दान श्री अमृत सरजिया दर्शन स्नान। चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दी सदा।

सचे पिता वाहगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी विखे शब्द कीर्तन से पौड़ियां आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जियां दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा वांदर प्रवान करनिया यात्रावां सफल करनिया दरों घरों गुरु सिखी जीवन नाम बानी दियां दातां बख्शनिया गुरमत अनुसार मनोकामनावां पूरियां करनिया कलंगी धर सचे पातशाह चो जी प्रीतम जिया धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी आप जी ने कृपा करनी मेहरामत करनी आउन वाला समा आप जिया की जान दे आप जिया दे प्रेम दे विच वतीत करवावना आप जिया दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो हुक्मानुसार जीवन ज्यों दी समर्था बख्शो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला दोहरा गया भैया काल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी माने ओ जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा

ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सावते मड्डा सतगुर नानक।

सचनउ सचे नाम की लागे भूख पुत भुखे खाए चली हैं दुख सो क्यों विसरे मेरी माए सच्चा साहिब सचे नाए रहाओ सचे नाम की तिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जैसा मिलके आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट न जाए ना ओह मरे ना होवै सोग देंदा रहे ना चुकै भोग गुणे होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जे वड्याप ते वड़ तेरी दात जैना जैना करके कीती रात खसम विसारी ते कम जात नानक नावें बायसनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रकाश मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वड़े रे जन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सहें मिल संगत गुण प्रकाश जना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितमें उद्दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहो जनन पिता लोक सुत बैंता कोय न किसकी तरिया सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया उड़े उड़या वैसा कौंसा तिस पाछी बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सदगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवें सब ते आवें तुझ जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी

तू जिया का दाता रा हर दया बहु संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व नरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर दयावे हर दयावे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत भाए जिन हर त्याया जी तेन टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापहे जपहे बयंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर शास्त्र जी कर किरया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुदे आपे सृष्ट सब पाई जी तुदे आपे सिरे सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनाओ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुग भाया तुदे आ विछोड़िया आ मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माही तुझ बिन दूजा कोई नाही जी जन सब तेरा खेल विजोग मिल बिछड़िया संयोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद मिन दूजा अवर ना कोए
तू कर कर वेखे, तू कर कर वेखे जान ही सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पाईले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। पंकजो माहो पग नहीं चाले, हम देखा तहें डूबियले। मन एक न चित समूढ़ मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवंत नानक तिन की शरना, जैनो तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मान कुदे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते न काम, मेल साध संगत पाज केवल नाम। स्रंग्या लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहो। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया। कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया। कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाव पाई, हमरी क्रोहा दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवय तुम काब हो, आभा दे मोहे बचाव हो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवय करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब एरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारी है। आभा दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा। राख ले ओ मोहे रखन हारे, साहेब संसाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सवलोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आधे अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी,
सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो वध कियो, कटकट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर बछन्ने, कट कट के पड़ पड़ की जन्ने, जाभ उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तव देहे अपार, जाव आकर्क करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रायतन रालम, जानत बेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार नरलंब, आद अनिल अनाद असंभ, तक मूड़े चारत भेदा, जाको भेव न बावत बेदा, ताको कृपाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, ड्रंकार का चीनत न भव, आप अपनी बुध जेती, बरनद भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा, अंड जेर से तजकीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी श्रेष्ठ दखाए अचंप, अजुग स्वरूप स्वयंप, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पत्ता, सकल मलेच्छ करो रण गाता, जे आस तुझे तव शरणी बरे, तिनके दुष्ट दुख्त हवाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को इक बात है, ताकि काल निकट न है, रक्षा हुए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरे हो, ताकि ताप तन कमाए हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवाए सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसते ताहे ओबारा, जिन नर नाम तेहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओवारी, सर्व ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओवारी, सर्व ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, सवैया।
पाएं गहे जब ते तुम अरे तब ते को आंख तरह नहीं अन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री अस्पाण कृपा तुम री कर मैं ना कह हो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहार द्वार बही गए की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहार द्वार बही गए की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सदगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सदगुर तां वाया सहज सेती मन मजियां वाधाइयां राग रतन परवार प्रियां शब्द गावन आईया शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नहीं घर तेरा है घर ता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मानव सावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मने है बसया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दियां एह बड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागे घर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे कह नानक तें सुख होआ तित घर अन्न हद बाजे आनंद सुनहो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे
पूरे गुर ते जानी सुनत पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिन्नवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्नो हद तूरे सुनत पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिन्नवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्नहाद तोरे मुंदामणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को भुंचाए तिसका होए उधारो एह बस्त जी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लगत रिय सब नानक ब्रह्म पसर श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पाय होई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा

तू प्रभदाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगू किछ थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। जाचिक मंगे दान दे प्यारिया, देवन हार दतार। मैं नित चितारिया, निकुट न जाई मूल अतुल भंडारिया। नानक शब्द अपार तिन सब किच सारिया, जाचिक मंगे नित नाम, साहिब करे कबूल। नानक परमेश्वर जजमान, तिसे भुख ना मूल। करता तू मेरा जजमान, एक दखिना हो तै पै मांगू। देह अपना नाम, हम भीख पेखारी दे रे। तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम दियो मंगत जन को। सदा रहो रंग राता, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। विसर नाही दातार, अपना नाम देहो। गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो। विसर नाही दातार, अपना नाम देहो। गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो। सुख हो टल गुर सेवी है, आहे ने सहज सुपाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसमी, नूरे अरसों कुरसों झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह हो, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाहो। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वैसाहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाहो। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वैसाहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी, सोही महला चौथा। जिनके अंतर बसया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुक्त पाए जिन हर नाम त्याया, तेना पवित परम पद पाए। जिनके अंतर बसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए।
ते मुक्त पाहे जिन हर नाम त्याया तेना पवित परम पद पाए मेरे राम हर जन आरोग पाए गुर बचनी जिन जपया मेरा हर हर तिनके होमे रोग गए रहाओ ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रैगुण रोगी विच होमे कार कमाई जिनकी है तिसे ना चित्त बपौड़े हर गुरमुख सोजी पाई हो मेरो सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख पारी गुर पर सादी को विरला छूटे तिस जन को हो बलहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने तक रूप अपर नानक अपे बेक हर बिगुसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने तक रूप अपारो नानक अपे वेख हर बिगसे गुरमुख ब्रह्म बिचारो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणों विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल अमृतमई बाणी का कीर्तन रूप विच लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुर इतिहासक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकाग्र करदे हुए निमाने जे होके समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणों विच जुड़न दा यतन करिए। सभना दियां हाजरियां सतगुरु महाराज जी दे पावन चरणों विच लग जान। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता अमृत के दाते सरबंस दानी बादशाह दरवेश शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन इतिहास नू लड़ीवार सरवण करदे आ रहे हो। आनंदपुर साहिब पवित्र स्थान चारे पासे दूर दराडे प्यार वालियां संगतां गुरु महाराज जी दे चरणों विच आके नतमस्तक हुंदियां हन। जिथे रब्बी बाणी दे नाल सतगुरु पातशाह जी की कृपा नाल संगतां जुड़दियां ने उथे खंडे बाटे की पहुल तैयार हुंदी है। अमृत संचार हुंदे ने अमृत अवलाखी आके सतगुरु महाराज जी की कृपा दे नाल सिंह और सिंघणियां सजदे हन। बाणे और बाणी दे रंग विच रंगदे ने भावें बाई धार दे राजियां ने लखां दी फौज लै के आनंदपुर साहब नूं घेरा पाया और काफ़ी लंबेरे समय तक ये जंग भी कीती और हार के वापस आपो अपनियां रियासतां दे विच चले गए। आनंदपुर साहब जिहड़ा आनंद है वह उसे तरह ही बनिया है। आनंदां दी पुरी दे विच आनंद ही आनंद वरत रहा है। क्यों? क्योंकि दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु जी मौजूद हैं। चारे पासे तो सिख संगतां दा आउणा हो रहा है। जिहड़े शस्त्र महाराज जी ने तैयार करवा के रखे हुए ने उन्हां नूं दोबारा सतगुरु महाराज जी ने कढवाया। उन्हां दी साफ सफाई सतगुरु महाराज जी करवाउंदे ने क्योंकि ये शस्त्र भी साडे वास्ते सत्कार योग ने। इन्हां शस्त्रां दे अगे भी साडा सीस जिहड़ा उह झुकदा है। सतगुरु महाराज जी अपने वल्लों तैयारी करवा रहे ने क्योंकि पता है आउण वाले समें दे विच इस तों भी वड्डी जंग हो सकती है। इस तों भी वड्डा घेरा आनंदपुर साहब जी नूं पैणा है। इसलिए महाराज ने पहलां ही सारियां तैयारियां करवाइयां ने और करवा भी रहे ने। तो समां जिहड़ा है वह इस तरह बतीत हो रहा है। अगले प्रसंग दे विच कवि जी जो जिक्र करदे ने ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ।
1: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੀ ਤੁਰਨ ਤਨ ਬੈਸ
0: ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਹ ਵਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਲੀ ਹਨ, ਬਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਨ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਵੀ

देख हर बिगसै गुरमुख ब्रह्म विचारू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत

समरथ सब विद कुल है समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तो मूरत करी चसापल सिमरन राम नाम रसना संगलो होछो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहा।

खान पान सो दे सुख पुंचत, संकट काट विपत हरी, मात पिता पाई अर बंदप, बूजन की सब सूझ परी, वर्धमान होवत दिन प्रतिनित, आवत निकट बिखम जरी, रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक करी, कार गह लिहो कृपाल कृपा निद, नानक काट परम परी।

विचरे अनेक शास्त्र बहु खटुआ, पसम लगाए तीरथ बहु भ्रमते, सुखम देह बंदे बहु जटुआ, बिन हर भजन सगल।

जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अवरासर भरिया अकथ